दरबार पर खर्च मंगा जब आए दे ता खाए दीवान को कलम कहमा तुमा मेल दर लेखा पीठ छुटे नानका ज्यों।

0: का सवारी है, का सवारी है, सवारी है।
1: पौड़ी आपे ही करना क्यों गले आपे ही तारी है, देखा कि अपना दरक चिपकी सारी है, जो है सो चल सी सब कोई आई बारी है, जिसके जी प्राण है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नहीं अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम युपतिन सुतरताली अशारिया 6 मीटर या नट्स 73 किलो हर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत

0: बेईमान बनना बहुत आसान कम है, पर ईमानदार बनन लई बहुत दलेरी अते हिम्मत दी लोड़ पैंदी है।
1: एसी अज दा ज्ञान अमृत लो हुण सरवण करदे आं भगती संगीत दा प्रोग्राम अराधना।

ना कोई शिकायत ना कोई मलाल रखा, मैं तेरे पाने विच ही अपना ख्याल रखा। जिथे तू रखे उत्थे ही सकून है, बस यही एक अरदास हर पल कायम मैं रखा।

हुण तुसी सरवण कर रहे सी भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना। असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। हुण पेश है खेतीबाड़ी प्रोग्राम।

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगी। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

0: ते प्रसारण समित वीरवा हुण तां थोड़ी देर बाद सवेरे 7:02 तो लैके 8 बजे तक तुसी सुनोगे मनोरंजन ते जानकारी भरपूर प्रोग्राम सोनी सवेर। 8:40 ते तुसी मसीही भजन सरवण करोगे। सवेरे 9:02 ते शास्त्रीय संगीत ते प्रोग्राम सुर साधना विच अज तुसी पंडित डी वी पुलिसकर दा राग मियां की मल्हार विच गायन सुनोगे। ज्ञान विज्ञान प्रोग्राम दा समा रहेगा सवेरे 9:30। अज ते इस प्रोग्राम दे विच तुसी वन महा उत्सव ते डॉक्टर गुलजीत सिंह चड्डा दी एक विशेष वार्ता सुनोगे। इस दे नाल विज्ञान तत्थ ते विज्ञान खबरां भी तुहानू सुनाईयां जाणगीआं। सवेरे 10:02 ते समा रहेगा प्रोग्राम हैलो फरमाइश दा। तुहाडे वट्सएप राही भेजिया हुई फरमाइशां नू पूरा करदा प्रोग्राम पंजाबी गीतां दीआं फरमाइशां भी जिहड़े तुसी गीत सुनना चाहुंदे हो उस दे लई प्रोग्राम होएगा तमक जलंधर पैंदी ते समा रहेगा सवेरे 11:05। नन्हे मुन्ने बच्चे अपना प्रोग्राम सुनेंगे बाल जगत 12:05 ते दोपहर 1:15 तो लैके 2:15 तक तुसी सुनोगे प्रोग्राम फौजी वीरां लई। इस दौरान खबरां आपो अपने समय ते नशर कीतियां जाणगियां। रंगली धरती प्रोग्राम दे विच अज तुसी कुलवंत सिंह ढाडी ते साथियां पासों वारा सुनोगे। शाम 4:02 ते सिरजना प्रोग्राम दे विच अज तुसी डॉक्टर धर्म सिंह नाल कीती मुलाकात सुनोगे। इन्हां दे नाल मुलाकात कीती डॉक्टर हरमीत कौर ने। शाम 4:30 असीं तुहानूं श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलांगे जिथों तुसी शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे। साडा रोज़ाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार तुसी सरवण करोगे शाम 5:30। शाम 6:30 ते हाथी प्रोग्राम पेश कीता जाएगा। अज दे इस प्रोग्राम दे विच तुसी फुल्लां दी काश्त विषय ते डॉक्टर सुखदीप सिंह नाल कीती मुलाकात सुनोगे। संगीत रूपक पेश कीता जाएगा। कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा। असी अपने सुनण वालियां नूं दस दईए कि ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 दे फाइनल मैच विच अज आस्ट्रेलिया दा मुकाबला इंग्लैंड नाल होवेगा जिस दी रनिंग कमेंट्री तुसी साडे FM रेनबो TTH DRM ते शाम 7:30 तो सुनोगे ते साडे प्राइमरी चैनल ते इस दा प्रसारण शाम 7:40 तो मैच दे खत्म होण तक होवेगा ते साडे प्राइमरी चैनल दे प्रोग्राम तुसी मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर यार दे जरिए सुन सकते हो जिस दे तहत 7:40 ते वगदे पानी प्रोग्राम तहत तुसी अमरजीत कौर दा कविता पाठ सुनोगे। प्रोग्राम तुहाडी चिट्ठी मिली दा मुड़ प्रसारण रात 8 बजे पेश कीता जाएगा। 9:15 तुसी सुनोगे स्पॉटलाइट। साढ़े दिल्ली केंद्र तो रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम पेश किया जाएगा रात 9:30। रविवासरीय अखिल भारतीय कार्यक्रम तुसी सुनोगे रात 10:00 साढ़े दिल्ली केंद्र तो। TTH की आकाशवाणी पंजाब सेवा तो बाद तुसी सुनोगे बाद दोपहर 3:02 ते प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां अते रात 11:10 ते समा रहेगा लाइव फोन इन ते वट्सएप राही आईया फरमाइशां नूं पूरा करते प्रोग्राम सौकात का। इसी परचे तहत साढ़े इस मीटर तो अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम ते उना दे प्रसारण समय का वीरवा असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर के 6:55 हो जा रहे हैं। हुण तुसी साढ़े दिल्ली केंद्र तो संस्कृत विच खबरां सुनोगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः गुजरातस्य सानन्दक्षेत्रे सीजी सेमिसंस्थायाः अत्याधुनिकस्य ओसेट् सेमिकण्डक्टर् संयन्त्रस्य उद्घाटनं कृतम्। अत्रावसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांतेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढ़विश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज

0: सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अयं विकासः भारतस्य प्रगाढ इलेक्ट्रॉनिक्स क्रान्तेः आगामी चरणमस्ति, येन देशः पूर्वमेव विश्वस्य द्वितीयः बृहत्तमः दूरभाष निर्मातृत्वेन समेधितः। सः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् सानन्दक्षेत्रं वैश्विक सेमीकंडक्टर केन्द्रत्वेन समेधिष्यते।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: तेन गदितं यत् सानन्दं प्रतिवर्षं 20 कोटि चिप्स निर्माणार्थं सज्जमस्ति। तेन 500 कोटि परिमितस्य लक्ष्यनिर्धारणार्थं शुभाशयाः अपि प्रकटिताः। अत्रावसरे केन्द्रीयमन्त्रिणा अश्विनीवैष्णवेन घोषितं यत् 26-2000तमवर्षान्तं यावत् भारते 5 सेमीकण्डक्टर् संयन्त्राणि पूर्णतः क्रियाशीलानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्यापि उद्घाटनं कृतम्। तदनन्तरं सः बालोत्तरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासोऽपि कृतः। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण 21तमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु नवनियुक्तेभ्यः 45,000 युवभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि प्रायच्छत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सानन्दक्षेत्रे नूतन सीजी सेमी ओसेट् इत्यस्य उद्घाटनं प्राविधिक आत्मनिर्भरतायां भारतस्य अभिनव पदक्षेपः इत्युदीरितवान्। अस्य अत्याधुनिक संयन्त्रस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना कृतम्। गृहमन्त्रिणा सामाजिक सञ्जालीयतन्त्रे स्वलेखे प्रकटितं यत् भारतस्य प्रौद्योगिकी महाशक्तित्वेन विकासयात्रायामेषः कश्चन नूतनः कीर्तिस्तम्भः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य प्रभृति अस्य मासस्य 10 दिनांकं यावत् कतार, बहरीन, कुवैत, ओमान देशानां आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। स्वप्रवासकाले विदेशमन्त्री तत्तद्देशीयानां समकक्षनेतृभिः सह शीर्षनेतृत्वेन च सह मेलिष्यति। विदेशमन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् अयं प्रवासः एतैः देशैः सह भारतस्य द्विपक्षीयसम्बन्धानां दृढीकरणे विशेषेण केन्द्रितः भविष्यति। संसदः वर्षाकालीनसत्रमस्य मासस्य 20 दिनांकात् अगस्तमासस्य 23-10 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। संसदीयकार्यमन्त्री किरण रिजिजू सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः जुलाई मासस्य 20 दिनांकात् संसदः वर्षाकालीनसत्रस्य आह्वानाय सर्वकारस्य प्रस्तावं स्वीकृतवती। आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्वचषके लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रीडांगणे इंग्लैंड दलम अद्य अंत्यद्वंद्वे ऑस्ट्रेलिया दलम सम्मुखी करिष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा तावत् भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਦੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ ਸੈਮੀ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ, ਮੀਡੀਆ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ 8:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे

0: और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है।

0: मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 150,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
2: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को

0: वो फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashvani presents Morning News. Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udan to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities. Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूजी ते तीजी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा नूं हुलारा देने लई खेतरी हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान के अगले पड़ाव की शुरुआत की है। सरकार ने किसानों की आमदन वधाने ते कीमतों ते कंट्रोल लई प्याज की खरीद कीमत में 13% का वाधा करके 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आस्ट्रेलिया दौरे तो पहला आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीस ने प्रमुख आर्थिक भाईवाल वजो भारत की शलाघा की है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक देश के बहुते हिस्सों में भारी बारिश जारी रहेगी। पंजाब कई थावां ते भारी बारिश लई 8 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी। ते फ्रांस ते मोरक्को दीआं टीमां फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल च पहुंच गईआं ने। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूजी ते तीजी श्रेणी के शहरों के नाल नाल दूर दुराडे इलाकों में हवाई यात्रा नूं हुलारा देने लई खेतरी हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान के अगले पड़ाव की शुरुआत की है।

0: ਕਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: कार तो काम करो, वादू तनखा, बस एक क्लिक ते, वाजी वाह।
5: फसी।
6: अनजान लिंकां ते क्लिक ना करो। आरबीआई कहंदा है,
7: जानकार बनो, सुचेत रहो।
8: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
0: मीडियम वेव 343.6 मीटर नेट्स ते हेतर किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुर साधना। अज के इस प्रोग्राम दे विच आओ हुण पंडित डीवी पुलिसकर दा राग मियाँ की मल्हार विच गाया गायन सुनदे हां।

समय समय पर तस्वीर उतार लेना भी अच्छा है, अपनी यादों को एल्बम में संभाल लेना भी अच्छा है। गया वक्त तो फिर लौट कर कब आता है, इस वक्त को यादों में संभाल लेना अच्छा है। बीता वक्त तुम्हें पल पल याद आएगा, कभी बैठोगे और एल्बम का पन्ना खुल जाएगा। भीगेंगी कभी आंखें, कभी लम्हा मुस्कुराएगा, तुम्हें कोई भुला भी यकायक याद आएगा। याद रखना ये तस्वीरें तुम्हें उम्र दराज होने नहीं देंगी, तन्हाइयों में भी तुम्हें तन्हा होने नहीं देंगी। हेलो फरमाइश प्रोग्राम सुनने वालियां दी खिदमत विच पूजा हांडा दी प्यार भरी नमस्कार। बिल्कुल जी, तुसी हो बिल्कुल तैयार। 0181-2342-173 नंबर कर रहा है तुहाडा इंतज़ार। ते खूबसूरत गीत दे नाल कर दिता है प्रोग्राम दा आगाज़। दिल तो पागल है फिल्म दे विचों ले उदित नारायण ते लता मंगेशकर दियां आवाज़ां दे विच गाए इस गीत नू तुसी सुन रहे हो। ते तुहाडी फरमाइशी गीत केड़ा होएगा, तुहाडी पसंद दा गीत तुहाडे तक पहुँचेगा उदों ही जदों तुसी 0181-2342-173 नंबर नू डायल करोगे, साडे इस प्रोग्राम दे विच पहुँच जाओगे ते अपनी फरमाइश सानू दस दोगे। ते फिर असी तुहाडी पसंद दा गीत तुहाडे नाम पते ग्राम दे नाल तुहाडे रेडियो सैट दे उत्ते पहुँचा देना। बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है इस सिलसिले दी, ते हुण मैनू है तुहाडा इंतज़ार, ते तुहाडे इंतज़ार नू खूबसूरत कर रहा है प्रोग्राम दा पहला एक उदित नारायण ते लता मंगेशकर दियां आवाज़ां दे विच गाया एक खूबसूरत गीत।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। की तुसी रेडियो प्रोग्राम जा वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 दे तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तो वक्-वक् प्रोग्रामां लई अर्जियां दी मंग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। वधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: पुराना समय जा रहा है, नया समय आ रहा है। हर कोई अपनी तरह से गम और खुशियां मना रहा है। हमारे लिए ना तो दशा बदली है और ना बदले हैं हालात। यहाँ कल खड़े थे, आज भी वहीं से रास्ता जा रहा है। पलट कर देख रहे हैं जो पीछे छूट गया, क्या पता वही समय फिर सामने से आ रहा है। हेलो फरमाइश प्रोग्राम दे विच तुहाड़ियां फरमाइशां तुहाड़े तक पहुँचाइया जा रही ने। वो फरमाइशां जो तुसी 0181-243-173 नंबर ते साडे इस प्रोग्राम दे विच आके कर रहे हो। अगले कॉलर आए ने, केड़ी फरमाइश दे नाल आए ने, आओ गलबात करदे आं। हेलो,
3: हाँ पूजा मैम जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
3: स्टाफ नूं जी, बाकी सुनने वाले सारे स्रोतां नूं जी, मैं सुखदेव सिंह गिल, नारमेरा पोता जी हर सिंह गिल, महला हरनामपुरा कोटपुर तों बोल
2: जी। सुखदेव जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दे विच।
3: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
2: बिल्कुल पूरी स्पीड दे नाल अपना नाम, पता, ग्राम तुसी सारा ही साडे सुनण वाले नूं दस दिंदे।
3: मैं बोलदा वी आया तां मैं तुरदा वी आया जी, 65 साल दी उम्र, मेरे नाल कोई तुर नहीं सकदा।
2: अच्छा जी, की काम काज करदे हो?
3: ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਖਵਾਈਦਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ ਦਲੀਆ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮਨ ਆ ਜੀ।
2: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
3: ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਆਈ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ।
2: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਰੇਡੀਓ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ?
3: ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, 60 ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਤੀ ਜਾਈ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ।
2: ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਵ ਫੋਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू कर दिया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से देश के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को और मजबूत करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों ही देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं।

0: रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजनबाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतिकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजनबाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ।

जी रतलाम एमपी, तो पिंड चंगूड़ी, यमुनानगर तो रणधीर, गुरमेज, गौरव, परवीन, युगम ते होर साथी, तपा मंडी तो शमशेर सिंह हांसा, हाँ सतपाल मान, इन्हां ने सानू मैसेज लिखा है। पिंड जोगीवाला श्री गंगानगर तो प्रेम सहारण, मोनिका, मनीष सहारण, तो इन्हां दी सारियां दी फरमाइश ते आपां सुनदे हां फिरोज़ खान ते मनप्रीत अख्तर दी आवाज़ां च ये गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ये परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकते हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।
3: लो जी, प्रोग्राम चल रहा है तमक जलंधर पेंदी, और इस प्रोग्राम दे विच तुसी साडे नाल शिरकत करदे हो। इस प्रोग्राम दे विच साडे कोल मैसेज दे जरिए, सो वट्सएप मैसेजेस जिहड़े सानू पहुँच चुके हैं 94655 36077 ते, वो असी इस प्रोग्राम च शामिल करते हैं और तुहाडियां फरमाइशां दी की तुहाडी नज़र करते हैं। सो मैसेज आ चुका है साडे कोल, लिखण वाले है जी मनीला फिलिपन तो मदन मोहन, सरबजीत, संजू, नीतिका, अजय, एंजल ते होर इन्हां दे साथी। अगला मैसेज है जी लिखण वाले आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, ये सानू मैसेज पा रहे पंचकूला सैक्टर 9 तो। अगला मैसेज आया है लिखण वाले पिंड संदोहा नेड़े मुड़ मंडी तो, जगराज सिंह कणकवालिया, गंगाराम, मोहन लाल, राजेश्वर सोनू, अरविंद कुमार ते होर साथी। आ मैसेज आया है रावर करनाल तो, ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। अगला मैसेज लिखण वाले आए जी कला नौर तो, नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन ते मयंक शर्मा। पहाड़गंज मुल्तानी टांडा तो अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक ते मधु नायक। आ मैसेज आया है जी तनौरी तेलीवाला तो, निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया ते आयान बाबू। अगला मैसेज है रिंगनी छत्तीसगढ़ तो, दिनेश वर्मा ते करुणा वर्मा। जलालाबाद पश्चिमी तो आए जी सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा। मलोट कैंप तो सतीश मिगलानी, अनमोल मिगलानी, महावीर संधू ते विवान मिगलानी होरा ने भी सानू मैसेज पाया है। पिंड तमोट लुधियाणा तो बूटा बिंदर, सिंधा, तेलवाल, तालीवाल। अगले है जी लो जी प्रगट सिंह तालीवाल ते नाल रवि। पिंड हीरा वाली फाजल का तो सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु, पार्वती ते हिमांशु गोदारा। लो जी ना सारे दी फरमाइश ते आपां सुनने आं गुरलेज अख्तर, दिलजीत दुसांझ ते गिप्पी गरेवाल दियां आवाज़ां च गीत।

आईजी कृष्णा कृष्णन बागला आशा साजन प्रिंस रजनी आंचल ते वंशोरी आया जी मैसेज अगला पिंड नंगल खेड़ा नेड़े फगवाड़ा तो बालकृष्ण शर्मा परवीन शर्मा मनीष शर्मा राहुल शर्मा ते होर साथी अगला मैसेज आया है मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन अब्बासी शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान ये सानू लिख रहे जी उपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुंदल बुलंदशहर तो इन्होंने मैसेज पाया है सानू। अगला मैसेज आया है लिखन वाले एस एम जावेद गुमला झारखंड तो मैसेज पा रहे जी संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ भारत मक्कड़ ये सानू पा रहे जी गुराया जलंधर तो मैसेज लिख रहे हैं जी। पिंड बिल्लीमार तो लिख रहे जी प्रेम कुमार परवीन रानी अलिशा अरमन राकेश ममता किसी भी गीत की फरमाइश इन्होंने लिखी है। रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तो जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जी एस नायक शोभा नायक तो इन्हों का पूरा परिवार। बठिंडा रोड मंडी डबवाली तो राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग लक्की नारंग तानिया किसी भी गीत की फरमाइश लैके इन्होंने सानू मैसेज लिखा है। लो जी इन्होंने सारे की फरमाइश से आप सुनते हैं सुरजीत बिंद्रखिए की आवाज़ से गीत।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए यह एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय

0: स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते। आओ हुण सुणदे हां नन्ने मुन्ने बच्चियां दा प्रोग्राम बाल जगत।

0: जय हिंद। चन्न सितारे बड़े प्यारे, बदल रुख प्रभात, अपने आप ने बदली जांदे सुंदर दिन ते रात। ते लो जी, बदलदे सुंदर दिन ते रातां दे नाल प्यारे बच्चियां दा मनपसंद प्रोग्राम भी आ जांदा है, और सुखदीप और गुरप्रीत बच्चियां दा मनपसंद प्रोग्राम उन्हां दे रेडियो सैट उपर लैके हाजिर हो चुके ने। ते लो प्यारे बच्चियो, करो साडा सलाम कबूल।
1: जी बिल्कुल, जो असं प्रोग्राम बाल जगत की गल करते हैं, बाल जगत में हमेशा ही बहुत सारिया गलां बातें, जानकारी ते मनोरंजन सारे ही प्यारे प्यारे बच्चों लिए जरूर से जरूर लेके आने। सिर्फ बच्चों लिए नहीं, नाल दी नाल सुनने वाले जिन्हें भी स्रोते ने वह सारे ही इन गलों से गौर फरमा सकते हैं। और जो सुखदीप जी असं गल करते हाँ, खास करके मौसमों की, दिनों की, रुत्तों की, बहुत ही सारिया यहोजी चीज़ा साढ़े आस पास आदि ने, सूँ सतर्क कर जाने ने। सो कुछ लाइना कहना चाहवागे कि मिठी जही आवाज़ एक तड़के कन्नी मेरे पैंदी है, उठ लाडले सवेर हो गई है, मम्मी प्यारी कहंदी है। इशारा जरूर ते जरूर सारे समझ गए होंगे कि स्कूल जड़े ने वो
0: खुल चुके ने, और बच्चे बाकायदगी दे नाल अपना होमवर्क करके लै के अपने टीचर साहबान नू चेक करवा चुके ने। और देखो जी, विच विच हुण उन्हां नू बहाना भी मिलेगा, क्योंकि बरसात जिहड़ी है वह खूब सारी हुई है पिछले दिन दे विच। और इस बरसात दे दिनां दे विच गुरप्रीत जी पता बच्चे की करदे ने, बहाना मारदे ने, अज मीह है जी, अज मैं स्कूल नहीं जाना। सो प्यारे बच्चियो, ये बरसात का मौसम बहुत अच्छा होंदा है, और इहदे विच एक काम आपां प्यारे बच्चे होर करना है। और जेड़ा हफ्ता भी असीं मनाउण जा रहे हैं, जुलाई का पहला हफ्ता जेड़ा है ना, वह वण महाउत्सव नूं समर्पित होंदा। और गुरप्रीत जी, मेरा तो ना सच जाणियो ये फेवरेट वाला हफ्ता है, क्योंकि मैनू बूटियां दे नाल बड़ा चंगा लगता है रहना, और कोशिश मैं करदा कि सवेरे ही इन्हां दे नाल अपनी सांझ पवा लवां। ते लो प्यारे बच्चियो, अज तुहानू भी प्रोग्राम दे विच दसांगे कि इन्हां बूटियां नू तुसी किद्दां उगा सकदे हो, और जिहड़े तुसी स्वादी स्वादी फल खांदे हो ना, उन्हां चों जिहड़ियां गिटकां निकलदियां ने, उन्हां दे बूटे किवें बना सकदे हो। सो प्यारे बच्चियां ने बाल जगत प्रोग्राम सुनदे जाणा है, क्योंकि असी अज तुहानू इस वण महाउत्सव बारे भी बहुत सारिया टिप्स देनिया ने, इन्हां बूटियां नू किवें लगाया जा सकता है इहदे बारे भी बहुत कुछ दसना है।
1: जी बिल्कुल, और जदों असीं गल करते हाँ खास करके इन्हां बूटियां नू, पौद्यां नू लगाउण दी, लगा के उन्हां नू संभालण दी, संभाल के उन्हां दा बहुत ही वधिया तरीके दे नाल ध्यान रखण दी, ते इह इक इहो जिहा स्टैप वाइज प्रोसैस है बच्चिओ जिहनूं करना बहुत जरूरी है। कई बार असीं की करदे हाँ, अज कल दे समें दे विच खास करके सिर्फ ते सिर्फ सोशल मीडिया दे उप्पर जाण दे लई फोटोआं करवा लैंदे हाँ, लेकिन बाद विच उन्हां प्यारे प्यारे पौद्यां दा ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखदे कि उह मुरझा गए, वधे फुल्ले, की होया की नहीं, कोई खाद नहीं, कोई चीज़ असीं इहो जिही नहीं करदे। सिर्फ तो सिर्फ छा जाण लई असीं अपनियां कारगुजारियां करदे हां, लेकिन बहुते सुखदीप इहो जिहे भी ने जिहड़े सच्ची ही कुदरत नूं बहुत ज़्यादा प्यार करदे ने, और प्यार करदिआं करदिआं इहो जिहियां कारगुजारियां करदे ने कि आउण वालियां पीढ़ियां तक भी उहनां दा धन्नवाद करदिआं ने।
0: लो प्यारे बच्चिओ, इह जिहड़े बूटे ने, इह जिहड़े रुख ने, इहनां नूं की चाहीदा है? एक स्पैशल अटेंशन चाहिए है उदों तक जदों ये तुसी हले लगाए होंगे ने, और एक साल बाद बड़ा कुछ दे देंदे ने, बड़िया छावां ठंडियां दे देंदे ने, बड़िया सारियां प्रोटेक्शन कर देंदे ने। और ये ख्याल इस करके मंगते हैं क्योंकि ये जदों भी असी किसी जगह पर लगाने, इन्हां नू पानी दी

0: खाद दी, गुडाई दी, कटाई दी, छटाई दी और बचा के रखण दी भी लोड़ पैंदी है, क्योंकि कई वारी जिहड़े पशु पंछी ने उह वी इहनां नूं तोड़ दिंदे ने, और कई ऐसे अंसर भी ने, बच्चे भी ने तुहाडे वर्गे, जिहड़े इहनां दे नाल लटकण दी कोशिश करदे ने जदों इह छोटे हुंदे ने, तां फिर उह बूटे टुट जांदे ने, और जदों वी बूटा सिर तों टुट जांदा है, कट जांदा है, तां उहदे थोड़े वधण दे आसार घट जांदे ने, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उहदे सट लग जांदी है। सो प्यारे बच्चिओ, इन्हां बूटियां दे नाल वी एक फैमिली बॉन्ड बनाउणा पैंदा है, क्योंकि ये मंगदे ने तुहाडे कोलों तुहाडा थोड़ा जिहा टाइम, और जदों तुसीं इहनां नूं दे दिंदे हो, फिर ये तुहानूं आउण वाले किन्ने 100 सालां तक खुशियां वंडदे ने, छावां दिंदे ने, ठंडियां हवावां दिंदे ने, और पानी हड़ां दे प्रभाव तों वी बचा के रखदे ने,
1: जी बिल्कुल।
0: प्रोटेक्ट करके रखदे ने।
1: और जदों असीं गल करदे हाँ धरती दी पकड़ जिहड़ी ने उहनूं मजबूत बना के रखदे ने, सो एक चीज़ जिहड़ी असीं तुहानूं सारिआं नूं दसणा चाहवांगे कि तुसीं की कर सकदे हो कि तुहाडी प्लेट जिहड़ी फलां दी है उह तुहाडे सामणे बच्चे परोसी जांदी है, ते सिर्फ तुहाडे पेरेंट्स दे वल्लों परोस दित्ती जांदी है। बहुती वारी की हुंदा है कि सुखदीप भैया पेरेंट्स की करदे ने, खास करके मावां, दादियां, नानियां, उह बच्चे नूं फल कढ के किते उहदी गिटक निगल ना जावे, उहदा जिहड़ा बीज उहदे अंदर ना चला जावे, उहनूं बिल्कुल साफ़ सुथरा करके जिहड़ा साफ़ चीज़ है उह बच्चे दे अगे परोसी जांदी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛਿੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗਿਓਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
0: ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੇ ਬਰਸਾਤ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ।

0: अपने कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो छोटी सी खेती हो, जो फसलों से दहक रही हो। थैंक यू सर।
1: धन्यवाद उन्होंने सारे बच्चों का जिन्होंने अज्ज सानू खूबसूरत अपनी आवाज़ दे विच रिकॉर्डिंग करके भेजिया ने। और प्यारे बच्चों देखो, वण महा उत्सव का हफ्ता चलता पिया है, और इनू सिर्फ फोटो खिचाउण वाला हफ्ता नहीं बनाउणा कि असी सोशल मीडिया ते असी जी बूटे लगाए, फोटो लगा दित्ती। बूटे लगाओ और उन्हां दा ध्यान भी रखो, उन्हां दे वड्डे होण तक एक फोटो अज खिचो उह छोटे जे बूटे दे नाल, और दूसरी फोटो 6 महीने बाद या 2 महीने बाद खिचो कि असी इहदा ध्यान रखते पे हाँ, असी इहदी टेक केयर करते पे हाँ। और देखो बहुत सारे प्यारे बच्चे तुसी बूटे लगा सकते हो, और कई लोग ना गुरप्रीत पता की एक्सक्यूज़ करनगे या अपने आप नू लिमिटेशन करन दी कोशिश करनगे अपने आप दे कि साढ़े घर च ते जगह है नहीं। जिन्हां दे घर च थोड़ी जगह है, देखो जी एक 6 इंच दे होल दे विच तुसी एक वेल लगा सकते हो, दो वेलां लगा सकते हो 12 इंच दे छोटे छोटे दो होलां दे विच अलग अलग डायरेक्शन दे विच। और ये की करदियां ने, ये सीधे दियां सीधियां उपर बिल्डिंग दे विच चलियां जांदियां ने, और वड्डे वड्डे रुखां तों भी ज़्यादा इन्हां दे पत्ते ते फुल बन जांदे ने, और ये भी ऑक्सीजन देण दा काम करदियां ने प्यारे बच्चों। सो बहाना कोई नहीं लगाउणा, फुल्लां वालियां वेलां लगाओ, पत्तियां वालियां खूबसूरत वालियां फलदार फुल वाले वेलां वाले बूटे लगाओ, इस हफ्ते दा फायदा उठाओ।
2: जी बिल्कुल, और जदों प्रोग्राम बाल जगत दे विच असीं तुहानूं कुछ ना कुछ बच्चों सिखा रहे हुंदे आ, ओह चीज़ां तुसीं खास करके अपने तक ही सीमित नहीं रखणियां ने, गल्लां बातां जानकारी मनोरंजन जो भी तुहाडे नाल सांझ पाउंदे आ तुसीं इह दूसरिआं तक भी पुजदा कर सकदे हो। जरूरी नहीं है कि तुसीं बच्चिआं नाल ही सांझ पाउणी है, वड्डिआं नाल भी सांझ पा सकदे हो, सियाणे सूझवान बच्चे बन सकदे हो। क्योंकि कई बार की हुंदा है कि सिर्फ ते सिर्फ इक छोटी जिही चिंगारी दी जरूरत हुंदी है, छोटे छोटे कम करके वड्डिआं वड्डिआं पुलांगां जिहड़ीआं ने जरूर ते जरूर पुट सकदे हो, और आउण वाला समां जरूर ते जरूर तुहानूं दस्सेगा कि तुहाडी मेहनत जिहड़ी है ओह फल लै के आ गई है। हो सकदा है जे तुसीं वधिया वधिया फलां वाले रुख लगाओगे ते तुहानूं आउण वाले समें दे विच मेहनत दा फल जरूर ते जरूर मिल जाएगा सच्ची वाले फलां दे रूप दे विच। प्रोग्राम बाल जगत विच सिलसिला चल रहा है जी नन्ही कलम दा, नन्ही कलम तों दे ज़रिए सुनदे आ अगली परफॉर्मेंस।
3: नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम परिणीता शर्मा है। मैं जो आपको बाल जगत प्रोग्राम में कविता सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मच्छर। सर्दी गई लो गर्मी आई, मच्छर जी ने ली अंगड़ाई, अस्वच्छ जगह से उठकर आया, खून पिएंगे मन ललचाया, चोरी चोरी कान के अंदर कह गया मीठी बाणी, सोया क्यों है जागरे प्राणी, ना हड्डी ना मांस है इसमें, थोड़े से कुल सांस है इसमें, एक बार जब लड़ जाएगा बुखार मलेरिया कर जाएगा, डेंगू चिकनगुनिया तो बस याद दिला दे नानी, सोया क्यों है जागरे प्राणी, वैसे तो है रात को आता ईशा को जब सोया पाता, भूखा हो तो दिन में आए चुपके से है खून पी जाए, स्वच्छता ही इलाज है इसका ना कर आना कानी, सोया क्यों है जागरे प्राणी। धन्यवाद।
1: लो जी प्यारे बच्चे बहुत ही होनहार ने, और साडे मोढे दे नाल मोढा मिला के बाल जगत दे विच रौनकां लगाउंदे पए ने, और अपनी नॉलेज दे नाल साडे प्रोग्राम दे विच चार चंद लगाउंदे पए ने। बरसात आउंदी है, और देखो जिथे असीं बूटे लाउने आ उत्थे कई चीज़ां होर भी हुंदियां ने प्यारे बच्चे। बरसात दे मौसम दे विच हुंदा की है कि बरसात दे नाल बैक्टीरिया बहुत एक्टिव हो जांदा, और मच्छर ते भिन भिनाउण लग पैंदे ने। और देखो प्यारे बच्चों, ये जिहड़े मच्छर ने ये दुनिया के सब तो खतरनाक जीव ने, इन तो बच के रहण की सलाह डॉक्टर देंदे ने, और इन्हू पनपण किवें नहीं देना असी अपने आले दुआले कि किसी भी जगह के उत्ते बरसात के मौसम के विच पानी इकट्ठा नहीं होण देना, क्योंकि इस पानी के उत्ते डेंगू वाले मच्छर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। सो हले बरसात स्टार्ट हुई है, असी अपनियां छत्तां की सफाई कर देनी है, जिथे कूलर पए ने उन्हां दा पानी वकेट कर देना है, और देखो जी अपने आले दुआले भी यही मुहिम असी चला देनी है, क्योंकि असी सोशल मीडिया ते बहुत कुछ पाने हाँ बिना लोड दे सर्कुलेट करन वाला, और इदां दियां भी अवेयरनैस जिहड़ियां ने उह असी अपने दोस्तां मित्रां दे नाल भी सांझियां कर लेनियां कि मच्छर तों बचा किवें कीता जा सकता है।
2: जी बिल्कुल, इस दे नाल नाल बच्चे तुहानूं इह चीज़ भी जरूर ते जरूर पता होनी चाहिए है कि जिस तरीके दे नाल असीं अपनी जिंदगी दे विच कारगुजारियां करदे हां उहनां दा फायदा सानूं इंसानां नूं ते जरूर जरूर होना चाहिए, नाल दी नाल जिहड़े साडे पंछी ने जानवर ने उहनां नूं भी इस दा फायदा होना चाहिए, क्योंकि उह अपने इमोशनस अपने भाव जिहड़े ने सानूं बोल के व्यक्त नहीं कर सकते,

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: प्यारे बच्चों का मनपसंद प्रोग्राम चलता पाया जी बाल जगत, और बाल जगत दे विच हुण वारी है जी नॉलेज टाइम दी, और नॉलेज टाइम प्यारे बच्चों नूं बहुत चंगा लगता है। और प्यारे बच्चों इहदे विच असीं तुहाडे लई लैके आउने आ नॉलेज दा पटारा, और उन्हां विशेष दिनां वल तुहाडा ध्यान दवाउने आ जिन्हां नूं दुनिया भर दे विच मनाया जांदा। और क्यों मनाया जांदा? क्योंकि इह जिहड़े दिन ने उह साडे इंसानां दे लई, ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਨ

0: नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो।

0: the Income Tax Department.
1: ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਟਨ ਦਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्ची में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते। पेश है इस मीटर ते प्रसारित होने वाले बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समां। हुण तो कुछ देर बाद यानी दोपहर 1:15 बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम फौजी वीरा लई।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। सरकार ने तरल कुदरती गैस LNG की सप्लाई ते लागू हंगामी पाबंदियां हटा लईयां ने। खेतीबाड़ी ते देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी कानून सफलता नाल लागू होने ते खुशी जाहिर करदिया कहा कि अगले 5 सालां च इस कानून तहत 7.5 लाख करोड़ रुपए तो वाधा निवेश किया जाएगा। सरकार ने सोशल नैटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम से पेड इश्तहारां विच बच्चों के जिनसी शोषण ते अश्लील समगरी के प्रसार को लेकर मैटा नूं सख्त चेतावनी जारी की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज तो 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत ते ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। प्रसिद्ध पांडवानी गायिका ते पद्म विभूषण नाल सन्मानित तीजन बाई का देहांत हो गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। सरकार ने तरल कुदरती गैस LNG की सप्लाई ते लागू हंगामी पाबंदियां हटा दित्तियां ने। पछमी एशिया के संघर्ष विच जंगबंदी तो बाद हॉरमुज़ स्ट्रेट राही कुदरती गैस की सप्लाई मुड़ शुरू होने तो बाद फैसला लिया गया है। पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन विच कहा कि कुदरती गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 विच सोध की गई है। इस सोध तहत हंगामी प्रबंधा नूं हटा दिता गया है। हॉरमुज़ स्ट्रेट राही LNG सप्लाई विच रुकावटों तो बाद इस साल मार्च विच जरूरी वस्तुओं संबंधी कानून तहत हंगामी आदेश जारी किया गया सी। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस गल ते खुशी प्रगट की है कि विकसित भारत गरंटी फार रोज़गार ते आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई तो सफलतापूर्वक लागू हो गया है। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही इस मिशन तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। उन्होंने कहा कि जिथे मनरेगा लागू करने में 3 सालों तो वध समा लग्या उत्थे विकसित भारत जी राम जी सिर्फ 1 दिन देश भर में लागू कर दिता गया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत के दृष्टिकोण को तेजी से लागू करने लिए इस एक्ट तहत अगले 5 सालों में 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए तो वध दा निवेश किया जाएगा।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: भारत अपनी ब्रिक्स प्रधानगी हेठ केरला के कोची विच कल तो शुरू हो रही 2 रोजा ब्रिक्स महिला कार्य समूह की मीटिंग की मेजबानी करेगा। महिला ते बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स मैंबर देशों के सीनियर सरकारी अधिकारी सारे खेतरां विच औरतां दे शक्तिकरण अते औरतां दी अगवाई वाले विकास नाल संबंधित मुख मुद्दियां ते विचार वटांदरा करन लई इकट्ठे होणगे। महिला कार्य समूह की मीटिंग मैंबर देशों नूं औरतां दी अगवाई वाले विकास ते विचार वटांदरा करन अते सहमति बनाउण दा मौका प्रदान करेगी। मंत्रालय ने कहा कि मीटिंग 8 ते 9 जुलाई नूं होण वाली ब्रिक्स महिला मंत्री पद्धरी मीटिंग लई इक मजबूत आधार तैयार करेगी। सरकार ने सोशल नैटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम से पेड इश्तहारों में बच्चों के जिनसी शोषण और अश्लील समगरी के प्रसार को लेकर मैटा नूं सख्त चेतावनी जारी की है। अधिकारित सूत्रों अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम नूं उन्हां सारे इश्तहारों से समगरी नूं हटाने का हुक्म दिता है जो अजिही समगरी नूं उत्साहित करते हैं ते इसकी पहुँच नूं सुविधाजनक बनाते हैं। इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना तकनोलॉजी मंत्रालय ने 7 दिनों के अंदर मैटा तो वेरवे सहित स्पष्टीकरण मंगया है। सरकार इस गल की समीक्षा कर रही है कि की प्लेटफॉर्म ने भारत के सुरक्षा दिशा निर्देशों की पालना की है। भारत में डिजिटल कानूनों तहत अश्लील समगरी और बाल जिनसी शोषण समगरी की वंड एक अपराध है। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, तो यूट्यूब पर साडा चैनल है @AIR जलंधर।

0: ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੇਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਂਡਵਾਨੀ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤੀਜਨ ਬਾਈ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। सरकार ने आबनाए हुरमुस के रास्ते रकीक कुदरती गैस LNG की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपए की इमदाद जारी की है। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेहसाल से मुतालिक इश्तिहारात हटाए जाएं। सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ की नामवर पंडवानी गुलुकारा तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में बहुत तेज़ बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और ख्वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने मगरबी एशिया महाज़ाराई में जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुरमुज़ के रास्ते रकीक कुदरती गैस LNG की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। एक नोटिफिकेशन में पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा है कि कुदरती गैस की सप्लाई से मुतालिक इंजबाती ऑर्डर 2026 में तरमीम की गई है, जिसके तहत उन अहम इमरजेंसी दफात को हटा दिया गया है जिनकी रूह से सरकार को अंदरूनी मुल्क तैयार करदा कुदरती गैस और दरामद की गई LNG अलॉट करने को तरजीह हासिल थी। आबनाए हुरमुज़ के रास्ते LNG की खेप में रुकावट पड़ने के बाद इस साल मार्च में लाजमी अशिया से मुतालिक एक्ट के तहत ये इमरजेंसी ऑर्डर जारी किया गया था। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 इस महीने की पहली तारीख से नाफिज हो गया है। वज़ीर मौसूफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मस्कूरा मिशन के तहत रियासतों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की इमदाद मंजूर की और इसे जारी किया। जनाब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम MGNREGA की जगह विकसित भारत जी राम जी एक्ट को कामयाबी के साथ इख्तियार किया गया है। उन्होंने कहा कि MGNREGA पर अमल दरामद में 3 साल लग गए थे, जबकि विकसित भारत जी राम जी एक्ट पूरे मुल्क में सिर्फ 1 दिन में ही नाफिज कर दिया गया। जनाब चौहान ने कहा कि इस एक्ट के तहत अगले 5 साल के दौरान 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सरमाया लगाया जाएगा ताकि विकसित भारत के नजरिए की रफ्तार में तेजी लाई जा सके।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का दौरा कल से शुरू हो रहा है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को तकवीत मिलेगी और इश्तराक के नए रास्ते भी खुलेंगे। आज जकार्ता में आकाशवाणी के साथ इंटरव्यू में इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे और ताउन के कई नए शोबे खुलने से ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे और दो बड़े मुल्कों के दरमियान इकतसादी राबते

ज़्यादा मजबूत होंगे। जामे कलीदी साझेदारी के बारे में सफ़ीर मौसूफ ने कहा कि इस शराकत दारी के कई सुतून हैं, इनमें से एक दिफा और सिक्योरिटी है। इसके अलावा ताल्लुकात में और ज़्यादा इक्तसादी सरगर्मियाँ भी शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जय शंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वजारत ख़ारजा ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और मज़कूरा मुल्कों के दरमियान दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर इश्तिहारात में बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल और ज्यादती से मुतालिक मवाद के सिलसिले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सरकार ने इंस्टाग्राम को ये हुक्म दिया है कि उन सभी इश्तिहारात और मवाद को हटाया जाए जिनके ज़रिए बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत ने मेटा से 7 दिन के अंदर अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। सरकार इस बात का जायजा ले रही है कि आया मजकूरा प्लेटफॉर्म ने भारत के मुतालिका सेफ्टी रहनुमा उसूलों पर अमल किया है या नहीं। डिजिटल कवानीन के तहत भारत में फहाशी और बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से वाबस्ता मवाद की तकसीम एक फौजदारी जुर्म है। इससे कबल वजारत ने इन इत्तलात का नोटिस लिया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा काबिल एतराज मवाद दिखाया गया है जिससे बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को बढ़ावा मिलता है। सरकार ने मेटा से जवाब तलब करने के लिए मुतालिका अहलकारों को हिदायत भी जारी की थी। छत्तीसगढ़ की मारूफ पंडवानी गुलुकारा और पद्म विभूषण से सरफराज तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। वो तवील अरसे से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने आज अलसुबह 3:15 के करीब आखिरी सांस ली। अपनी पुरसर आवाज़, स्टेज पर शानदार कारकर्दगी और गायकी के मुनफरिद अंदाज के सबब तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ पूरे भारत बल्कि बैन अलावामी सतह पर भी एक नई शनाख्त दी।

भारतीय लोक आर्ट के लिए उनकी गैर मामूली और गिरां कद्र खिदमात के एतराफ में उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर रमेन डेकर और वजीर आला विष्णु देव साय ने भी तीजन बाई के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है और लोक रिवायात को महफूज रखने, नीज छत्तीसगढ़ की सकाफती विरासत को आलमी मंजरनामे तक ले जाने में उनके ग्रां कद्र रोल की सताइश की है। डॉक्टर तीजन बाई की आखिरी रसूम दुर्ग जिले में उनके आबाई गाँव गनियारी में आज शाम पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज साबिक मरकज़ी वज़ीर रामविलास पासवान के योम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि रामविलास पासवान को अवाम और मुल्क की खिदमत के तई उनकी लगन और अज़्म के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इस साल सालाना अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हौसला अफजा रही है। यात्रा शुरू होने के पहले दो दिन के दौरान 32,313 अकीदतमंदों ने अमरनाथ गुफा में दर्शन किए। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने और कहीं कहीं इंतहाई मूसलाधार बारिश होने के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। इधर कौमी राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और औसत बारिश होने की पेशगोई की गई है। ख्वातीन के आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर फाइनल में पहुंची है, जबकि इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी और लगातार छठी कामयाबी हासिल की थी। खास खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने अबनाए हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस एलएनजी की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत

0: रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपए की इमदाद जारी की है। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेहसाल से मुतालिक इश्तिहार हटाए जाएं। सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। और छत्तीसगढ़ की नामवर पंडवानी गुलुकारा तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ दे पेश कर रहे हैं फौजी वीरा लई प्रोग्राम दा बाकी हिस्सा। फौजी वीरा आओ हुण सुनदे हां हेमलता दी आवाज़ च फिल्म अखियों के झरोखों से दा ए गीत।

0: मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है 1 साल 2 साल नहीं पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर

0: रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
2: Greater economic engagement between these two large countries.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
4: दिने दिने
5: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथा

0: सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजनबाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
1: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
2: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
0: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजनबाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ।

रावर करनालतो ने ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, महसगेट नाभा तो ने सोमदत्त कैरव ज्योतिराणी ते गुरमन्नत, श्री गंगानगर तो ने बजरंगलाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेचा, दिनेश कुमार शर्मा ते नरेश कुमार शर्मा, मुल्लापुर मंडी तो ने कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन ते दीपक जैन, पुरानी मंडी मुल्लापुर तो ने राजेश जैन, अरुणा जैन, अभिषेक जैन, गौतम जैन, रसगुल्ला जैन ते नगीना जैन। आओ दोस्तों इन्हां सारयां दी मिली जुली फरमाइश ते सुनदे हां प्रोग्राम दा आखिरी गीत राजवीर जवंदा दी आवाज़ दे विच ते इसे गीत दे नाल प्रोग्राम नूं इत्थे ही समेटांगे।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्ध सत्य

0: प्रतिमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। ओके। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां पंजाबी साहित्यिक रसाला सिरजना।

रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पोए पार थिए। एक कथन बाबा फरीद जी दा है। आप जी फरमाउंदे ने कि जिहड़ियां रूहां उस परमात्मा दे रंग विच रतियां हुंदियां ने, उन्हां नूं हमेशा प्रभु दे दीदार दी तलब रहिंदी है। पर अफसोस कि असी पुल्लड जीव हमेशा लोभ दे रंग विच ही रत्ते रहिंदे हां। साडे तन ते पां ही ऐसी चढ़ी हुई है कि साडे मन ते कोई होर रंगत चढ़दी ही नहीं। पर जिन्हां जीव रूपी स्त्रियां नूं उस सच्चे उस हरी दे रंग दी रंगत दी लोड़ पासदी है, वो गुरमुख जना दी संगत करदियां हन।

जाकव हर रंग लागू इस जुग में है, सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस्ता के जाका सतगुर पूरा। इस शब्द गायन कीता सिपाही ओंकार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार

की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता

0: सेक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो, ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर, सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अज दोहा विच कतर के प्रधानमंत्री ते विदेश मंत्री मुहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी नाल मुलाकात की थी। दोवां नेतावां ने दवल्ले सहयोग के वख-वख पहलुआं की समीक्षा की। पेट्रोलियम बरामदकार देशां दे संगठन ओपेक प्लस ने इस साल अगस्त तो तेल उत्पादन विच 188,000 बैरल प्रतिदिन वाधा करन लई सहमति प्रगटाई है। केंद्रीय देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार ते आजीविका मिशन देहाती कानून तहत राजा नूं 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 आज तो शुरू हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले जत्थे नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया। इंग्लैंड ते आस्ट्रेलिया विचकार औरतां दे आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच आज लंडन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड विखे खेडिया जाएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अज दोहा विच कतर के प्रधानमंत्री ते विदेश मंत्री मुहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी नाल मुलाकात की थी। दोवां नेतावां ने दवल्ले सहयोग के वख-वख पहलुआं खास करके ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा अते लोकां तो लोकां दे संबंधां दी समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच विदेश मंत्री ने कहा कि दोवां नेतावां ने रणनीतिक भाईवाली नूं डूंगा करन लई नवे मौकियां दी भाल भी की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय भाईचारे की सुरक्षा ते सलामती नूं यकीनी बनाने लई उन्हां दा धन्नवाद किया ते पश्चिमी एशिया संघर्ष ते इसदे प्रभाव ते उन्हां दे मुलंकड़ सांझे करन दी शलाघा की। पेट्रोलियम बरामदकार देशां दे संगठन ओपेक प्लस ने आलमी तेल बाजार दीआं स्थितियां दी समीक्षा करन लई बुलाई की वर्चुअल मीटिंग दे बाद इस साल अगस्त तो तेल उत्पादन विच 188,000 बैरल प्रतिदिन वाधा करन लई सहमति जताई है। अज मीटिंग तो बाद जारी कीते गए एक बयान विच साउदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अलजीरिया ते ओमान समेत 7 ओपेक प्लस मैंबर देशां ने कहा कि यह फैसला बाजार स्थिरता नूं उत्साहित करन दे उद्देश नाल लिया गया है। तेल उत्पादक समूह ने कहा कि वह आलमी तेल बाजार की निगरानी करना जारी रखेगा ते सहमत उत्पादन टीचियां की पालना नूं यकीनी बनाएगा। हिस्सेदार देशों की अगली मीटिंग 2 अगस्त को होने वाली है। इस दौरान पहला सरकार ने तरल कुदरती गैस एलएनजी की सप्लाई ते एमरजेंसी पाबंदियां हटा दित्तियां ने। पश्चिमी एशिया संघर्ष में जंगबंदी तो बाद होरमुस पणजोड़ राही कुदरती गैस की सप्लाई मुड़ शुरू होने तो बाद फैसला लिया गया है। पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन विच किया कि कुदरती

0: गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 विच सोध की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड के 6 दिन दौरे ले रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के सदे ते जकार्ता जाएंगे। अपनी यात्रा दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो नाल दवली गलबात करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता विच भारतीय भाईचारे नूं संबोधन भी करेंगे। विदेश मामलों के मंत्रालय के सकत्र रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा कूटनीतिक मीटिंगों के नाल नाल सभ्याचारक विरसे की संभाल से केंद्रित होगी।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी नाल एक विशेष इंटरव्यू विच इंडोनेशिया विच भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोवां देशां विचकार संबंधां दी मजबूती अते वधी होई आर्थिक शमूलियत नूं स्पष्ट तौर ते दर्शाएगी।
2: The significance is immense.
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
2: greater economic engagement between these two large countries.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा तो पहला प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत में एक महत्वपूर्ण आर्थिक भाईवाल दसिया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि साडा रिश्ता एक व्यापक रणनीतिक भाईवाली ते आधारित है। ये खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो, साडा xhandle@aiiraarnew जलंधर। केंद्रीय देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महीने की पहली तरीक तो विकसित भारत रोजगार ते आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी कानून 2025 दे सफलता नाल लागू होने ते संतुष्टि जाहिर की थी। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही इस मिशन तहत राज्यों नूं 25,000 करोड़ रुपए की मुख सहायता जारी की थी। उन्होंने सारे राज्यों ते केंद्र शासित प्रदेशों के देहाती विकास मंत्रियों नाल VBG रामजी स्कीम के लागू करने की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि अज जारी की गई पहली किश्त का उद्देश यह यकीनी बनाना है कि राज्यों को लोड़ींदे फंड होण तां जो 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा नूं लागू करन विच 3 सालों तो वध समा लग गया, पर विकसित भारत जीराम जी नूं सिर्फ 1 दिन विच देश भर विच लागू किया गया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत के दृष्टिकोण नूं तेज करन लई इस कानून तहत अगले 5 सालों विच 286,000 पंचायतों विच 7.5 लाख करोड़ रुपए तो वध दा निवेश किया जाएगा।
3: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 286,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शिवपुरी विच एक रक्षा निर्माण प्लांट का नींव पत्थर रखा। ये प्लांट अडानी समूह वालों करीब 2,500 करोड़ रुपए के निवेश नाल बनाया जाएगा। इस मौके बोलदिया केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी के इतिहास विच एक नवा अध्याय लिखा जा रहा है। यह फैक्ट्री गोली सिक्के, उच्च तकनीकी हथियार और मिशन लिए तैयार मिजाइलों का उत्पादन करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टंकापुर तो कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया। जत्थे विच 49 श्रद्धालु शामिल ने, जिन्हां विच 34 मर्द ते 15 औरतां ने, इन्हां विच एक डॉक्टर भी है। इस मौके मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, सगों अध्यात्मिक जागृति, सभ्याचारक एकता ते राष्ट्रीय सद्भावना का प्रतीक है। उन्होंने अगे कहा कि यह यात्रा सरहदी खेतरां, सैर सपाटा ते स्थानक आर्थिकता दे विकास नूं भी उत्साहित कर दिए। श्री धामी ने श्रद्धालुओं नूं स्थानक दस्तकारी अते उत्पादां नूं खरीद के स्थानक लोकां नूं उत्साहित करन दी अपील की थी। विदेश मंत्रालय ने कुछ व्यक्तियों वालों सोशल मीडिया से व्यापार, प्रवास से होर नीतिगत

0: की पहचानिया किनू पई गौनिया की पई गौनिया की पहचानिया इन्ना जाननिया कुछ लोच रिया जिन्हों खोज रिया अजकल लभते पेंडी ते हाँ मिट्टियाँ फरोलनिया मिट्टियाँ फरोलनिया बंद परतना खोलनिया हनेरिया नू टोनिया चाननिया नू टोलनिया मिट्टियाँ फरोलनिया बंद परतना खोलनिया हनेरिया नू टोनिया चाननिया नू टोलनिया बस लभनी ही रहनिया कुछ कछनी ही रहनिया अजकल लभते पेंडी ते हाँ विल्ला चो चाकनिया विल्ला चो चाकनिया चीथा चो तकनिया टठवाणा कोल रुकनिया गुमदा कोल खलनिया विल्ला चो चाकनिया चीथा चो तकनिया टठवाणा कोल रुकनिया गुमदा कोल खलनिया बूहे ठकोरनिया कमरे खोलनिया भोरिया च वड़निया बीड़ा चो लंघनिया भोरिया च वड़निया बीड़ा चो लंघनिया खबरे किसती चाहते खोरे किनू चाग रही हाँ किस यब बिच पईयां बस लभ ही रही हाँ कुछ लभ ही रही हाँ क्या पेंडा है क्या पेंडा है क्या मुकाम है ना मील पत्थर ही दिसना है ना कोई दिसना है पड़ा मंजिल देवी खैर हुस्न किसनू है चा उम्रां दी पांदी इस पांदी च रुझी चलनी ही रहनी हाँ कुछ लभनी ही रहनी हाँ अजकल लभत दे पेंडे ते हाँ खोरे कि पा ले मैं ਕਬਰੀ ਕੀ ਤਲਾਸ਼।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਗਜੀਤ ਦੀ ਗਾਈ ਇਹ ਗਜ਼ਲ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी।

0: यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: With Prime Minister's arrival in Indonesia, प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान

0: तूफान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

लिए आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। इस माह के रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ऐसे शहर की कहानी जो न केवल लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ बनाता है, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण और लोकगीतों की धुन पर मुस्कुराता है। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख है शाहिद अनवर का और इसे प्रस्तुत किया है राजीव रंजन तिवारी ने।

0: जोहार हिंदुस्तान, आज आकाशवाणी के इस राष्ट्रीय क्षितिज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आंखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1907, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है। ये शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों हाथों ने अपनी श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंचे इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज डीबी सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन है, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी MDs आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, यूनियंस, एवरीवन, सबका अलाइनमेंट एक ही है कि जमशेदपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, तो कुछ लोग खुश है, कुछ लोग पूछते हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकते। वो दैट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोगों को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द सिटी।
0: अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है। उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतरीन संतुलन

0: और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डीबी सुंदर रामम रेखांकित करते हैं।
1: आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन ऑफ कार्बन इमिशन पर टन ऑफ क्रूड स्टील, बट इसको और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन्स, किसी का भी घर में, जिसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखेगा पेड़ पौधा जरूर रहता है, एवरी ईयर गार्डन कॉम्पिटिशन होता है, एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर। आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें। लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आए हैं, पार्क्स आए हैं, जहां ये सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो टीएमएच में लोड कम होता है। बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर्स है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग 1000-1200 crores एवरी ईयर टू ब्रिंग इट टू लेवल वेयर पीपल इवन एट 500 meters। अपना भी ख्याल रखना है और शहर का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए हम लोग हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों को ये नहीं असुविधा हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा।
0: जमशेदपुर के बारे में एक बेहद मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती बल्कि शहर टाटा स्टील की देखभाल करता है। कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक, आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अनूठे रिश्ते की जादुई बुनियाद क्या है, सुंदर रामम कहते हैं।
1: आज के जनरेशन के एम्प्लॉयज से पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम 3rd generation है, 4th generation है। कुछ एम्प्लॉयज मिलेंगे जो बोलेगा 5th generation है। नॉट ओनली एम्प्लॉयज, जितना शॉप्स है यहाँ पे, जितना एस्टेब्लिशमेंट्स है, सिंगबूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत है उस समय लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे। उस समय उनको भी जैसे कंपनी को तकलीफ हुआ उनको भी तकलीफ हुआ, बट फिर भी वो साथ दिए कंपनी का, इसलिए अभी ये पूरा टाटा फैमिली है। और ये भी बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल का कैसे उत्पन्न कर सकेंगे, बहुत अच्छा अच्छा आइडिया सर है। जितना भी आइडिया है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए।
0: ईंट, पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास, संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है। सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास। यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहभागी हैं, जैसे इस्पात और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है। अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शक्ति है तो विज्ञान उसकी बुद्धि है। जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश के धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं। विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं।
2: काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही है इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर सेक्टर में, ऑल दैट। ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पे लेकर किया जाए जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है। कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ है, अगले ही महीने वहां का वो रेल पटरी चक्का सब कुछ NML आ जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती है कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहां से होता है ताकि आगे जाकर के ये जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके।
0: भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं।
2: जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आए हैं फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स।
0: एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का दृष्टिकोण हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। आज के दौर में NML इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और औद्योगिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है, डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं।
2: हमारा उद्देश्य ये है, कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाई पर बनाते हैं उससे नई बैटरी अगर बन

0: है कि बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी। कल आपको जो ईवी का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है, शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें, एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सो दैट इज व्हाट वी फील दैट द ग्रीन केमिस्ट्री व्हाट वर्क्स इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर ई वेस्ट रिसाइकलिंग।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील और नैनो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं, और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है। लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता, विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर। इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है।
2: NIT जमशेदपुर 31 NIT से देश का एक NIT है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल में, तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट। रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग को नया नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फिर उपलब्ध कर सकता है, यूटिलाइज कर सकते हैं।
1: 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना, यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है। प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं,
2: इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कॉम्पिटिशन में, गया इधर से, एक लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग ईवी, रोबोटिक्स, अभी AI का जो आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करता है।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे। प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही तैयार करना बहुत जरूरी है। वो लोग को बोलना है जे भाई ये इट्स ए नॉट ए वन डे कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट्स ए लॉन्ग टर्म, यू डोंट रन बिहाइंड द पैकेज। आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो, वही हम लोग का सबसे महत्व उद्देश्य है।
1: विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ न मिले वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों।
3: मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है बल्कि XLRI की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है सो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पैथी, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है।
1: विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉर्पोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों। कुछ शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में।

0: लेकिन जमशेदपुर उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारी आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं।
1: किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए। हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। हम लोग कम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया, उस ऋषि मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो उसमें और जिम्मेवारी लगा, और जोश लगा, तो और लगाने का मन किया। और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए, तो उसके बाद हम लोग एसएचजी ग्रुप का काम किया।
0: चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं।
1: बहुत कोशिश किए, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किए। फल दे नहीं दे, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ, और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे।
0: एक सुदूर गाँव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का चामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपनी आत्मीय आवाज में वो कहती हैं,
1: आज पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे करते ही रहूंगी।
0: प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं तो वहाँ जन्म लेती है सोहराई कला। सोहराई के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को पहचान देना है।
2: सोहराय पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल, जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है, उनको कहानी लिखना, नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में, और युवाओं को समर्थन मिल रहा है। ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है, लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है।
0: हीरा मांझी की बातें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती हैं, सोहराई पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है।
2: एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, दूसरी तरफ शाम को नगाड़ा मादर की थाप गूंजती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है, जहां हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारी जनजातियां कलाकारों, विचारकों और साहित्यकारों बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना।
0: पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हीं को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है। तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की

0: बातें रोमांच से भर देती हैं।
1: आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में हर जगह, पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है।
0: रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को फतह कर सके।
1: मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम में लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटी जाते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ लाइफ जिंदगी सार्थक है, और बार बार यही सोचती हूँ कि एक लाइफ एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी करने के लिए।
0: साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं, जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहती हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है।
2: दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हमारे ही एकेडमी से कोमलिका बनी, हमारे ही एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे, बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी।
0: धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के CEO मुकुल चौधरी कहते हैं,
3: इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी अकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे TFA से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक एकेडमी करती थी, और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे, और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रणिडी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में तीन चार कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा, एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया हमको, टाटा फुटबॉल एकेडमी को, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं, जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपने पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कॉन्सेंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था, तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार, और वो भी जमशेदपुर में शुरू की गई, और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहां लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है TFA का।
0: आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में TFA अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं।
3: शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। काफी साल पहले TFA शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है, ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे, और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो, और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है, जो कि खासकर जमशेदपुर में काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है, तो एक साल उनको बेसिकली एक महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं, ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉलर, ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व है, और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी इस स्तर पे जाके खेलना है। ISL में भी काफी प्लेयर है, इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर है जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दें।
0: हॉकी भारत के दिल में बसती है, और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की

0: अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत सिंह राव।
1: हमारे दो बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है, तो ये एक हमारा एक एग्जाम्पल सेट होता है। आशीष तानीपुरती जिसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में, और उसी के साथ में उसने हाईएस्ट स्कोरर का भी खिताब उठाया है, तो ये एक एग्जाम्पल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है।
0: योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है।
1: हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल सीनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स, जहां पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस आरडीसी लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा।
0: मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक झलक हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं।
2: जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आँखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था जब सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियां मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था, शाम को साक्षी या बिष्टुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मानदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने कभी भी हमें हिलाया नहीं है। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है।
0: काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस्पात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत। प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आंखों का उजाला है। जमशेदपुर जहां कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहां प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहां खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहां संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहां विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है और उस सपने का नाम है मिनी भारत। उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे, जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर, वाचन स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी वादन। कैलाश शर्मा का संगीत जगत से परिचय बचपन में ही हो गया था। बांस से बने इस वाद्य यंत्र से निकलने वाली मधुर ध्वनियों से प्रेरित होकर उन्होंने नई दिल्ली स्थित गंधर्व महाविद्यालय में श्री प्रकाश एन सक्सेना से बांसुरी सीखना प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने पंडित विनय चंद्र मौदगल्य से भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियों का भी अध्ययन किया। बांसुरी कैलाश शर्मा के जीवन का अभिन्न अंग बन गई और उन्होंने निरंतर अभ्यास जारी रखा। उन्होंने अंतर महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। तब से लेकर आज तक कैलाश शर्मा ने अपने व्यावसायिक जीवन में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने भारत तथा विदेशों के अनेक देशों में व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं और उनके संगीत को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई है। उन्होंने महान संगीत सम्राट पंडित रविशंकर के साथ अनेक अवसरों पर कार्य किया तथा विश्वविख्यात रंगकर्मी श्री पीटर ब्रुक द्वारा पेरिस में आयोजित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए उनका चयन किया गया। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा मध्य पूर्व के 10 देशों की यात्रा पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एकल वादक के रूप में प्रस्तुति देने के लिए भेजा गया। कैलाश शर्मा ने राजधानी में आयोजित अनेक प्रमुख संगीत समारोहों में एकल वादक के रूप में प्रस्तुति दी है, जिनमें विष्णु दिगंबर जयंती, शंकरलाल संगीत समारोह, सेहर तथा नैना देवी स्मृति समारोह प्रमुख हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित कैलाश चंद शर्मा। पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक while he was still a child. Inspired by the sounds that emanated from this instrument made of bamboo, he started learning the flute from Sri Prakash N. Saxena at Gandharva Mahavidyalaya, New Delhi. Later, he also learnt the nuances of the Indian classical music from Pandit Vinay Chandra Modgalya. The flute became an integral part of Kailash Chandra Sharma's life and he played on, participating in and winning prizes at inter-college university level music competitions. Since then, Pandit Kailash Chand Sharma has come a long way professionally, having performed a great deal in India and many countries abroad. He has worked with the great maestro Pandit Ravi Shankar on many occasions and was selected to participate in a workshop organized in Paris by the renowned theatre personality Mr. Peter Brook. He was sent on a tour for 10 countries in the Middle East by the ICCR to perform as a soloist. Pandit Kailash Chand Sharma has performed as a soloist in some of the major music festivals that are held in the capital, such as Vishnu Digambar Jayanti, Shankarlal Music Festival, Seher, the Naina Devi Memorial Festival, to name a few.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित विनोद लेले। पंडित कैलाश चंद शर्मा अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मालगुंजी से कर रहे हैं। विलंबित रचना एक ताल व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। कैलाश चंद शर्मा बिगिंस हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मालगुंजी। विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू एक ताल एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

0: ये था पंडित कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा बजाया गया राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा अपने कार्यक्रम का समापन राग मिश्र खमाज से कर रहे हैं। मध्य लय रचना दादरा ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग मालगुंजी। पंडित कैलाश चंद्र शर्मा कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद राग मिश्र खमाज। मध्य लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू दादरा ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कैलाश चंद शर्मा का बांसुरी पर बजाया राग मिश्र खमाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित विनोद लेले। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: पंडित कैलाश चंद शर्मा वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय पंडित विनोद लेले। विद दैट वी कंक्लूड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वॉज अर्लियर रिकॉर्डेड in the studios of Akashvani Delhi. This program came to you from Delhi station of Akashvani.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई नगर महानगर पालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2000 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी दोस्तों, थोड़ा दोस्त शाम शर्मा हाजिर हो चुकिया है अज का सौगात प्रोग्राम लैके। डीटीएच की आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जलंधर केंद्र, तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी।

0: जी दोस्तों, बिल्कुल। जदों कोई जानदा इंसान साडे कोलों लंघ जाए ना बिना बोले, उस वेले असी थोड़ा परेशान हो जाने हैं, सोचते हैं कि इसने मैनू क्यों नहीं बुलाया। और जदों साडा चाहण वाला साडे कोलों लंघ जाए उदों ते फिर होर भी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। पर साडे कोल जी पहले कॉलर इस प्रोग्राम दे आ गए ने, सौगात प्रोग्राम दे। देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो, जय माता दी जी, कौन बोल रहे हो? यशपाल जी वैष्णो माता भवन तो बोल रहे ने। जय माता दी जी। और सुनाओ यशपाल जी, ठीक हो?
1: सब वधिया जी, ठीक ठाक सब।
0: ते वैसे दे भवन ते मेनू लग रहा है कि हले बारिश तो नहीं ज्यादा पई ना उधर?
1: बारिश शुरू हो गई है।
0: हाँ, परसों चौथ थोड़ी जी हुई है। हैं, चलो ते फिर हुण तुसी तां सवेरे फिर सानू भजन सुना के साडा दिल मोहना हुंदा है, ते अज सानू तुसी दस दिओ किहड़ी फरमाइश लै के आए हो। कच्ची टुट गई जिन्हां दी यारी। लो जी सुनाने हैं तुहानू। शुक्रिया जी यशपाल जी कॉल करन दे लई। जय माता दी जी।

0: जी दोस्तों, बिल्कुल कच्ची टुट के जिन्हां दी यारी पत्तलां ते रोण खड़ियां है, ये तो गल उन्होंने पुछ के देखो जिन्हां दी यारी टुटी हुई। प्रोग्राम सौगात चल रहा है, तुसीं बिल्कुल पक्की यारी लगा के रखनी है, जिस दे नाल भी लगानी है, क्योंकि ये जिहड़ी यारी हुंदी है ना, जदों टुट जाती है वह फिर गम दे विच इन्ना क ज़्यादा डुब जाते हैं कि तुसीं उन्हां नूं कढ़ना भी औखा हो जाता है। इस करके कोशिश करो किसी नूं इदां दे गम ना दिओ, यारी जोड़ के रखो। लो जी कॉलर आए ने, देखिए जी साडे नाल यारी किदां दी लांदे ने। हैलो,
1: हैलो, सत श्री अकाल सर जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: सर जी मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़ तो।
0: जी राजू जी, बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद सर जी। कहंदे यारी तू तो दा मोछा सबे नाल बचावे।
0: यारी दोबारा सुना दिओ फिर, दोबारा सुना दिओ। मैं क्या थोड़ी आवाज़ तुहाडी कट रही सी।

0: और फिर ती गल पता लग जाती है जो इंसान वो गल अंदर ही रख लेंदे ना, उस वेले फिर वो जज्बात तो ही पता चलता है कि ये की कहना चाहता सी, या कोई गल लुको गया या गल कोई अंदर रह गई। लो जी कॉलर आए नहीं, पहले उन्होंने पूछते हैं जी कितों आए ने। हैलो
1: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: मंगल सिंह धारीवाल जफरवाल।
0: मंगल सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद, शुक्रिया साडे।
0: मंगल सिंह जी की करते हो?
1: सिक्योरिटी दा।
0: अच्छा सिक्योरिटी दा, तुसी इस वेले अपनी जॉब ते होवो जां फिर ता?
1: हां जी हां जी जॉब ते
0: जी। प्रोग्राम अक्सर सुनदे हो?
1: हां जी अक्सर सुनदे, बहुत मजा आउंदा सर।
0: चंगा लगदा है। वाह जी वाह। ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰ ਚੱਕਾਂਗੇ।
0: ਓਕੇ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ?
1: ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ।
0: ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੇਕੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।
1: ਧੰਨਵਾਦ।

0: जी दोस्तों, बिल्कुल गीत दे विच किन्नी सच्चाई है। मां हुंदी मैं पेके आना, पेके हुंदे मामा नाल। वैसे गल सही है जी, ये सच्चाई तो है, लेकिन अगर आपां 100% कहीए तो ये भी सच्चाई नहीं है। हले भी जिहड़े मां प्यो तो बाद भी जिहड़े भरा हुंदे ने ना, वो भैणां नूं बहुत प्यार करदे ने। पर किते किते ये भी है कि जिथे माँ प्यो चले जाते हैं उत्थे फिर वो मान सम्मान जिहड़ा भैण नूं मिलना चाहिए है, वो शायद नहीं मिलता। लो जी, साडे कॉलर आए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो
1: नमस्कार सर,
0: जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: मंडी कॉलर में तो रवि कौशिक बोल रहे हैं।
0: जी जी रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: हाँ जी, बहुत बढ़िया था तुम्हें राव जी।
0: ते रवि जी तो साढ़े बहुत पुराने स्रोते ने।
1: हम बहुत बार दारू लाके सुतो जी, मैं सब आगे सब वगैरह हों भी तुम्हें थोड़ा लावा दे।
0: आय हाय हाय, क्या ही बात है जी।
1: आज पर सर मेरी आ गए संडे है ना। पर संडे सुंदर प्रोग्राम है, संडे को फोन लाने।
0: हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी, तुम साढ़े प्रोग्राम
1: खास लगा भाई।
0: क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी, तुसी साडे प्रोग्राम नूं पसंद करदे हो, कॉल भी करदे हो।
1: ਤੇ
0: हाँ जी जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, तुसी साडे प्रोग्राम नूं सुनदे हो, रोज़ कॉल भी करदे हो, कदी कदी कॉल भी करदे हो, ते अज किहड़ी फरमाइश लैके आए हो?
1: ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੀਤਲਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਲਗਲ ਉੱਤੇ ਨੀਲ ਪਿਆ।
0: ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੋਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨੀਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਰੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।

0: बिल्कुल मजा आया ना गोरी गल उत्ते नील पिया। वैसे हासे नाल भी फुल मार लो ना तां भी नील पै जांदा, इस करके तुसीं कदी कदी फुल मार के वेख लिया करो कि नील पिया कि नहीं पिया। प्रोग्राम सौगात का वेला 1 घंटे का पिया है। जिन्हों दोस्तों ने हले तक सानू कॉल नहीं की है जरूर कॉल करो 0181 2342 171 नंबर डायल करके, थोड़ा दोस्त इंतजार कर रहा है शाम शर्मा आ जाओ इस प्रोग्राम च। लो जी कॉलर आ गए। हैलो
1: हेलो शाम शर्मा जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: डेरा कॉलोनी फाजिलका तो बोल रहे हैं सर जी।
0: जी जी धर्मा सागर जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद बहुत बहुत
0: धर्मा सागर जी, प्रोग्राम चंगा लग रहा है?
1: हाँ जी बहुत वधिया, साडी पेशकारी बहुत वधिया हुंदी सर जी।
0: और क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया जी। ते गीत भी वधिया लग रहे ना?
1: हाँ जी बहुत बहुत वधिया सर जी।
0: आज फिर तुसी केड़ा गीत सुना रहे हो?
1: जी सुना रहे मैन प्रीतो दे।
0: आए हाय हाय रमेश रंगीला दी आवाज दे विच। शुक्रिया जी धर्मा सागर जी, सुनाने हैं थानू नैन प्रीतो दे।

0: क्या बात है, बिल्कुल सही पछाणिया ना जी। मैं चन्न सितारे की करने, मैनू इश्क हो गया अखियां नाल। वैसे तो जी ये जिहड़ियां अखियां होंदियां ने ना, जदों इश्क हो जाता उस वेले फिर इन अखियों तो अलावा होर कुछ नहीं सोचता। और तुसीं भी इस प्रोग्राम च साडे नाल इश्क कर सकदे हो, यानी कि इस प्रोग्राम दे नाल इश्क कर सकदे हो। प्रोग्राम सौगात दा वेला तकरीबन 50 मिनट का पिया है, तो इस प्रोग्राम से जरूर आओ। लो जी कॉलर पहुंचे ने, देखिए जी कितों आए ने। हैलो।
1: हेलो वीर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो? सुखबीर छाजली जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। आवाज तो लिटली है। हाँ, अख लग गई है। हो जाता है। अच्छा, तुसी साडे प्रोग्राम दा आनंद मान रहे हो? बहुत शुक्रिया जी। साडे इस प्रोग्राम च तुसी भी एंट्री मारी है, क्योंकि तुसी तां सौ गए सी, पर फिर भी जिहड़ी तांग हुंदी है ना कि आपां अपने सारे दोस्तां नाल अपनी गलबात करनी है, वह तुसी पूरी कीती है। तो सुखबीर जी की सुना दी अज फिर तुहानू? लो बब्बू मान दा गीत दे नाल सुनीदी चौहान भी आ रहे ने नाल ही।
1: ठीक है,
0: शुक्रिया कॉल दे लई जी।
1: ओके सर, गुड
0: नाइट। थैंक यू जी।

जी दोस्तों, पता ही नहीं लग गया मैनू प्यार हो गया। बिल्कुल, कदों प्यार हो जाता है ये तो पता लगता ही नहीं है, प्यार हो जाता है। इस करके दिल नू भी काबू ते रखो। पर कॉलर आए ने, इन्हां नू काबू च करिए। हैलो हैलो हैलो हैलो लो जी, कहिंदे सीगे, कहिंदे मेरा ये किते गीत लगा दियो, फोन ना कट जे, क्योंकि ये ना किसी रिमोट एरिए इस वेले जिथे कि रेंज कदे आंदी है कदे चले जाती है। पर इन्होंने देवी मखसूस पुरी का गीत सुनने की फरमाइश की सी। दोस्त सन साडे प्रीतम जी पिंड लादुका तो, इन्होंने जिला फिरोजपुर तो

0: जी दोस्तों, दिल पहला जिहा नहीं रहा, ये कठोर हो गया। वैसे तो जी दिल जिहड़ा है ना, ये कठोर होना तो नहीं चाहिए, पर ये भी किते किते मजबूर हो जाता है। कॉलर आ गए ने। हेलो
1: हाँ जी, नमस्कार शर्मा
0: जी।
1: जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: भूषण कटारिया मलोट तो बोलता जी।
0: जी, भूषण कटारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: मेहरबानी
0: कटारिया साहब, ठीक ठाक हो?
1: जी। हाँ जी, एक हो तो ठीक है, पर गर्मी बड़ी ज्यादा पड़ी जाती है जी।
0: हाँ, गर्मी तो है, गल सही है थोड़ी।
1: बहुत ज्यादा गर्मी है मलोट इस तरह जी।
0: तो फिर बारिश का कोई माहौल बनया नहीं हले है? परमात्मा अगे दुआ करने हैं जी कि जल्द तो जल्द कणी पवे। हाँ चलो, परमात्मा दे रंग ने जदों उसने वरना चंगी तरह ही वरना, फिर
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, उनके रंग न्यारे ही ने जी। बिल्कुल
0: हाँ उदी रजा ची राजी रहना चाहिए सानू सारयां नू।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: अज फिर की सुना दीए तुहानू?
1: जगमोहन कौर जी का सुना दो, कुंड विच नहीं लुकदे जी।
0: लो सुनाने हैं जी। शुक्रिया जी कॉल दे ले।

0: जी दोस्तों, सचमुच दाग पै गया, वीणी ऊपर दाग पै गया। ओ हो, लो जी प्रोग्राम सौगात का वेला रह गया 16-17 मिनट का। जिन्हें दोस्तों ने कोशिश नहीं की थी है, जरूर कोशिश करो। 0181-2342-171 नंबर डायल करना है। थोड़ा दोस्त शाम शर्मा तुहानू उड़ीक कर रहा थोड़ी सारिया की। लो जी कॉलर आ गए ने। हैलो
1: हेलो सर जी, सत श्री अकाल।
0: जी, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मनजीत मनी जी फाजिलका तो स्वागत है प्रोग्राम च।
1: ओके सर जी।
0: दरवाजा खुला ही आ जाओ फटाफट अंदर।
1: हाँ
0: लो जी, फिर आज केड़े गीत दी फरमाइश लेके आए हो?
1: बलकार सिद्धू लाओ सर जी, जान।
0: बलकार सिद्धू दी आवाज दे विच सुनानिया जी तुहानू जान जान कहिंदा है।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: शुक्रिया कॉल दे ले जी।
1: ओके सर, थैंक यू।

0: जी दोस्तों, जान कड लेना है जदों भी प्यारे आ, जान जान कहना है। क्या बात है जी, प्रोग्राम सौगात का वेला तकरीबन नेड़े पहुंच गया, हूँ खत्म होने वाला है, पर साढ़े कॉलर आए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो,
1: हेलो,
0: स्वागत है जी प्रोग्राम च, कौन बोल रहे हो?
1: मैं मोहनचंद्र बोल रहा जी, डेनवर यूएसए तो। जी
0: ओ अमेरिका तो साढ़े को कॉल आई है जी। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। हेलो मोहन चंद्र जी, स्वागत है प्रोग्राम च। हेलो, अमेरिका तो साढ़े को कॉल आई है, लेकिन इस वेले रेंज आई तो चले गई। मोहन चंद्र जी, ओ चलो इन्हों का संपर्क साढ़े नाल हो नहीं पा रहा। हैलो हैलो, लो जी गीत गा गए, हंसराज हंस की आवाज़ के गीत सुना दियो, तो सुनाने हैं जी इन्हों गीत।

गलबात सी पर तू ना समझ सकी, ए साहां दी मुलाकात सी पर तू ना समझ सकी, कुछ अणछुए जज्बात सी पर तू ना समझ सकी, साडी कल्यां दी औलाद सी पर तू ना समझ सकी।

को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरा राजन। ए फरमान सबना नू अपना मित्र समझण दी महान प्रेरणा है, पर सच्चे मित्र दी पछाण होनी अत्यंत लाजमी है। सच्चा मित्र केवल अकाल पुरख परमात्मा है, तांते फिर जीवां दा स्नेह उस अकाल पुरख संग होना चाहिदा है। उही सज्जन है, उही मीत है, उस दे घर विच ही सब कुछ है। की है जो उस पासों प्राप्त नहीं हुंदा, बस उस दी किरपा दे पात्र बनन दी लोड़ है। राग कानड़ा विच उचारे गए शब्द विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने, जन को प्रभ संगे असनेह, साजनो तू मीत मेरा, गृह तेरा सबके है। सरवण करदे आ भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द है।

0: जन को प्रभ संगे अस्नेह, साजनो तू मीत मेरा, गृह तेरा सब के है। इस शब्द गायन की तासी पाई हरजिंदर सिंह ते उन्हें रागी जत्थे ने। दरअसल सच्चा मित्र वो है जिस दे नाल मेल स्थापित कीत्या चंगी मत प्राप्त होवे, अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जावे ते अज्ञानता पलायन कर जावे। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी विच ऐसे अनेक फरमान हन जिन्हां दिसंदड़िया दुरमत वन्या मित्र असाडड़े से। सुनदे हां तेजिंदर सिंह होरां पासों ए वार्ता।
1: गुरबाणी अनुसार साडे असल मित्र उही मनुख हन जिन्हां दा दीदार होया भैड़ी मत दूर हो जाती है, पर अजिहे मित्र सारा जगत भाल वेखण उपरंत भी विरले ही मिलते हैं। गुरु अर्जन देव जी का श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 520 पवित्र फुरमान है, जिन्हां दिसंदड़िया दुरमत वंजै मित्र

मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, नाग निवासां दा रहना। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई वरिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। जिहड़े प्राणियां दा मित्र धनवान सर्व कला समर्थ अकाल पुरख है, उन्हां नूं किस बात की कमी आ सकती है। ऐसा साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी राग गौड़ी च उचारे गए शब्द विच फरमाउंदे हन। जाका मीत साजन है समिया, तिस जन कहो कहो काकी कमिया। इस शब्द का गायन किया है भाई ओंकार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे।

जाका मीत साजन है समिया, तिस जन कौ कह का की कमिया। इस शब्द गायन कीता सी पाई ओंकार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

व्यापत देखिया जगत, जान कौन तेरी गत। सर्ब की रक्षा करें आपे उत्पात, सर्ब की रक्षा करें आपे हर गत।

0: अखले हो नानक के स्वामी।
1: रे मन मूस बिला में गर्भत, करतब करत महामुगना, संपत दोल झोल संग झूलत, माया मगन भ्रमत कुगना। सुत बनिता साजन सुख बंदप, तास्यो मोह बड़्यो सोकना। बोयो बीज अंग मम अंकुर, बीतत औध करत अगना। मृत मझार पसार मुख निरखत, पुंचत भुगत भूख पुखना। सिमर गोपाल दयाल सत संगत, नानक जग जानत सुपना।

0: رب صدقہ
1: ब्रह्मा दिख शिव शांत मुनि सर रस करस ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र।

सुख टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुपाय। दर्शन परसे गुरु का, जन्म मरण दुख जाय। हो वै सिफत खसामदि, चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह। सिर शांद शाह, जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शांद शाह, जिस पास बैठ

उज्जल कैहा चिलकणा, कोटिम कालड़ी मास, तोत्या जूठ न उतरै, जे सौ सज्जन से नाल मैं चल दिया नाल चलन, जिथे लिखा मंगिया तिथे खड़े दिसन, कोठे मंडप माड़िया पसह चितविया, ठठिया कम नयावनी विचह सखणिया, बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन, घुट घुट जिया खावणे बग्गे ना कहियान, सिमल रुख शरीर मैं जन देख पुलन, से फल कम नयामनी ते गुण मैं तन हन, अंदुले पार उठाया

बात है, सोही महला पहला कर सेवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उज्जल कैहा चिलकणा, कोटिम कालड़ी मस, धोतिया जूठ न उतरै, जे सौ धोवा।

तदें सदा सहाई दातार जिया श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारे गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणिया दे माण नेताणिया दे ताण ने ओटिया दी ओट धन धन श्री

능사적한단시링하름만들어사회부지비켄딴난딴내사특으로시링으로가란타사회부지요마하라즘아버지대하주랑사번드짜웅키안난드사회부지키얼다슴올초금와프카니सच्चे पातशाह जिया जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाहा प्रसाद पेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जिया सरबत साध संगत नो अपने दरों करों सिखी सिद्धक परसा नाम दान बख्शना शुभ पावनावां पूरिया करनिया आप जी दे हाजूरां कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दार परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिखा पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवन नानक नाम

0: बदे जमपुर जाए महला पहला
1: सब सुत परम है दूजे लगे जा जमन मरना हुक्म है भाणे आवे जाए।